0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
0: कैसे?

0: श्रेष्ठ मिस्टर के मानस घले लुरे एन्ड ज्ञान चित्रकार जिरो लेभल एन्ड बिफोर एभ्रिथिङ ह्यापन देयर वाज अल्सो अनदर मेम्बर अर्ली मेम्बर लेट्स मेन्सन हिम एज वेल सौरभ सुब्बा अस किजो बट लेटर अन इट वाज जस्ट द ट्रियो अफ किरण मानस एन्ड ज्ञानन टुगेदर दे फर्म द ब्यान्ड नेपसाइडर्स यस एन आइकोनिक नेप हप ट्रियो इन डिड एन्ड आइ एम गोना लिभ यु विथ टू अफ देयर बिगेस्ट हिट्स फर्स्ट अप Chudaina, the remix by Nepsiders, and also Timi Mero. That's it, guys. I hope you enjoyed going back to nostalgia and all the Nep hop songs that I played for you. I'll be back next time. Until then, enjoy.
1: You heard? This is the remix.

0: यात्रा तिम्रो पनि अनि मेरो पनि।
1: केही आँसु केही हाँसु,
0: शायद यही नै हो जिन्दगी, शायद यही नै हो जिन्दगी।
1: यात्रा जिन्दगीको BFBS गोर्खा रेडियोमा।

0: यात्रा तिम्रो पनि अनि मेरो पनि।
1: केही आँसु केही हाँसु,
0: शायद यही नै हो जिन्दगी, शायद यही नै हो जिन्दगी।
1: यात्रा जिन्दगीको BFBS गोर्खा रेडियोमा।